0: क्या बात है।
1: रुक सके वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, रुक सके वक्त तुमने जो

0: लिए।
1: वाह जी,
0: अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर
1: वाह जी,

0: आओ पहली लाइन अगे पिछे होगी तो होगा, वफा दी मिसाल मर जाइए मार छाल, पर कच्चा कड़ा सोनी ते चनाव चाहिदे, रातां दिया नींदरां चराउण वाली नी सानू, हर एक पल दा हिसाब चाहिदे। आ ना मेरा आल आल जिम्मे कहते ना पिछले दिन मैं शेर बोलिया सी तो ओजला बाई जी कहन लगे, कहते भी वो सारे गाने दे विच कहते इहदा मकसद तां इह सी वी आ पिछली लाइन बोलनी सी ते उत्तों
1: जी
0: रेहड़ी लिया उसी धक्के नाल ही इह ते सुनाउणी सी इहने पिछली पिछली लाइन। आ वी मैं ना
1: जी
0: असल मैनूं आ वी मैं पिछली लाइन सुनाउण करके ही मैं थोनूं हुण ओह गल करन लग गया वा। कहिंदा
1: जी
0: मर जाना चंगा नित मर मर जीण तो, मर
1: वाह
0: जाना

मर जाना चंगा है मर मर जीण तो। डसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी एक

0: नैना लगे के। एक खुसरो जी दा जी है
1: क्या बात है जी, क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत,
2: बात
1: हर बार दी तरह जी।
0: हमारे। हाँ जी,
1: थैंक
0: धन्यवाद जी,
1: यू
0: तुसी
1: जसी जी,
0: टाइम
1: जुड़न दे
0: दिता।
1: लई, सांझ पाउन दे लई, विचारां दे लई, थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल जी। जी दोस्तों, इस सांझी अपने नाल मलेरकोटला तो जसी जी जुड़े सन ते गल्लां बातां अपनियां सांझियां करके गए ने। लाइना तुहाडे लई भी खुल्लियां ने दोस्तों, ते शम्मी जी फुर हो जाणा थोड़े चिर तक।
2: नहीं, मैं
1: जी
2: मतलब
1: जी,
2: हुणे हो रहे हैं जी।
1: क्योंकि
2: क्योंकि
1: मैनू खंभा की आवाज आ रही थी थोड़ी जी, फड़फड़ लग
2: मेरे साहब
1: पे,
2: ना इधर हुण
1: गल
2: अद्धी
1: तोतिया
2: रात हो चुकी है। इस तो
1: जी
2: पहला
1: टपड़िया
2: कि
1: बह
2: बूहे
1: जाए
2: बारियां
1: जी
2: घरे बनना पवे।
1: जी ते शमी जी, चलो आखिर दे विच इस दी समाप्ति नूं करन दी कोशिश
2: जी
1: करदे आं। मैं
2: हाँ
1: समझदा
2: जी
1: जिथे तक कि जे गुरु ते चेले दी गल आई है, ओहदे विच सब तों वड्डा समर्पण जिहड़ा देखण नूं मिलदा ओहदे विच, चाहे इन्हां मुल्कां
2: हाँ
1: दे
2: जी
1: विच आ के भी बैठे आ, कम कार सिखे ने, चाहे स्कूलिंग कीती है, ते ओहदे विच भी देखिया जावे जदों भी आपां किसे नूं गुरु मन्नदे आ, खास करके जां किसे नूं चुप चपीते भी आपां किसे तों कॉपी भी करदे आ, पर हूबहू कॉपी नहीं, चलो कदे सोचा नहीं सी कि रेडियो
2: बिल्कुल
1: करांगे जां किदां, ये भी चलो सुन सुन के सिख सिख के अजे सीखी जाने, अजे तां शुरुआत है। तां
2: जी बिल्कुल
1: लगदा है कि ओहदे विच जिहड़ा इक सब तों वड्डा त्याग है ओह होमे दा लगदा है किते ना किते, जदों ओह चीज आ गई उस्ताद नूं भी कहता भाई तू कौन आ भाई, ना चक के भगा के
2: ज्यादा
1: पहला तो कान ते छड़दे हुंदे सी ना, जां जे कहिए कि मैकेनिकल लाइफ दे विच देखिया जावे किते दे विच, ते उत्थे
2: जी
1: जां तां चाबी होनी, पाना होना, कई बार तां थोड़ी भी छड के मार दिंदे सी, बेल्ट होनी जिहड़ी है पखे नूं चाढ़ी हुंदी सी, उहना कुट कुट के चंगा उहदा बुरा हाल करदे सी, पाइप जिहड़ा सी पेट्रोल कढ़न वाला उहना कुट मारदे सी, है ना, सारा कुछ चलो देखते रहे हैं।
2: बिल्कुल
1: उस्तादी जां शकीरदी दा जिहड़ा रिश्ता है, ते जे लक्कड़ दे काम च देखिया जावे तां उत्थे भी चंगी कन्न मरोड़ी हुंदी सी, गालां भी पैंदियां सी, सारा कुछ हुंदा सी, जां स्कूलिंग दे विच वी देखदे आ पहले समयां च तां उत्थे भी झिड़कां जिहड़ियां सी मास्टरां दियां मैडमां दियां जरूर पैंदियां सी, शतरौल भी हुंदा सी, सारा कुछ हुंदा रहा, पर ओह ईगो जिहड़ी है इहनूं तोड़ना इह तों साबत हो जांदा कि बहुत औखा काम है जी।
2: पर सब ने एक ना पंजाबी बात है या लोक कहानी कह लो,
1: जी
2: उस च वो ऐ हुंदी है कहानी थोड़ी जी, चलो लंबी है पर मैं शॉर्ट करदा
1: जी
2: भी। वो कोई एक राजा है, एक वजीर है, उन्हां दी
1: जी
2: घर वालियां असेड़ियां ने। वो ना जदों वेलियां, क्योंकि उन्हां को काम कोई है नहीं, राजे ने करना है काम या बगी उहदे वजीर ने करना है। ये दोनों अपने अपने महल ते बह के कदे एक दूजे दे घरे डिनर होण दी, पार्टी होण दी, गल्लां बातां करदियां ने।
1: जी
2: ये कहने भी भाई जे साडे कोई संतान हुंदी है
1: जी
2: आप क्यों ना अपने इन्ना मतलब प्यार है, इन्नी मोहब्बत है, क्यों ना
1: जी
2: आप रिश्तेदारी बदलांगे। वो कहने ठीक है जी, चलो ऐ कर लिया। वो फिर होया ये कि रब की कुदरत, जिहड़ी राणी है ओहदे घरे बेटी हो जाती है, जिहड़ा
1: जी
2: वजीर है ओहदी घरवाली को बेटा हो जाता है। हुण ओह चलो वड्डे हुंदे आ जदों, ते ओह जिहड़ी राणी जिहड़ी वजीर की घरवाली है ओह राजे की घरवाली नूं कहिंदी है कि भैणे आपां ऐ मतलब देख लो प्रण करिया सीगा
1: जी
2: भी इहदा विआह हुण थोनू करना पैना जी, अपना देखो मित्रता है जी,
1: जी
2: जां आपां वादा करिया जी। वो राणी कहिंदी वी हां भाई गल तां ठीक आ
1: जी
2: भी, चलो आपां तां बड़ियां जबरदस्त सहेली है, मैं
1: जी
2: करदी घर वाले नाल गल भी, राजे महाराजे नाल करदी गल।
1: जी
2: ओह हुण गल चलो आई गई होगी, उन्हें करी नहीं जां कह लो मौका नहीं मिलिया।
1: जी
2: ओह फिर आ जी कहिंदे भैणे हद हो गई यार, तू गल नहीं करी
1: जी
2: बे, ऐ तां गल खासी बजू बस
1: जी
2: लेट हो जाता कम। चलो उन्हें एक दिन हिम्मत जी करके अपने पति ने गल करी भी ऐ करके जी इन्हां दे जन्म तो भी पहला मतलब ऐही जी आपां कमिटमेंट जी कर ली
1: जी
2: भी, जे साडे जवाक मतलब साडे मुंडा हो मुंडा कुड़ी जिहदे हो गया जो हो गया आपां रिश्ते करांगे। कहिंदा हुण
1: जी
2: ओहदे हुण भाई ऐ हो गया, आपां नूं अपनी बेटी दा ब्याह वजीर दे बेटे नाल करना चाहीदा।
1: जी
2: और राजा कहिंदा तेरा दिमाग खराब है, वो नौकर है साडा,
1: जी
2: चंगा लगदा मैं अपनी बेटी नौकर नाल ब्याह दूं, आ नहीं गल्लां होणियां, ये तू
1: जी
2: की करता है, ये तो बड़ी बेवकूफ है। वो कहिंदी ये तो हुण देखो मैं अपने वचनां तो फिर झूठी हो जू, फिर
1: जी
2: तो कुछ हल करो। हुण जिहड़े पोलिटिकल बंदे है ना ये कोई हल कढ लैंदे विचों,
1: जी
2: वो कहिंदा तू ऐ कर तू कोई गल नहीं, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ,
1: ਜੀ
2: ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ
1: ਜੀ
2: ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆ
1: ਜੀ
2: ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੀ।
1: ਜੀ
2: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ,
1: ਜੀ
2: ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ,
1: ਜੀ
2: ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ
1: ਜੀ
2: ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਆਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਮੁਇਆ ਹੋਣੀ ਨੀ
1: ਜੀ
2: ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਨੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ,
1: ਜੀ
2: ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋਚ ਭਾਈ,
1: ਜੀ

गल तेनू साडी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्ननी ही पैनिया। गल तेनू साडी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पन्ननी ही पैनिया। असी दिन रात लेंदे।

धारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। धारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

जिंदगी का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी एक है।

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी।

अड़या लोक मारी देताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइयां लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे

जो दुनिया पत्थर मारे असी ओ भी हस हस खा बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे। इश्क दी पौड़ी पैर टका के ये जिंद

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बेड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई।

मामे मासियां पुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। मामे मासियां पुआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। भैन ने आनी बकरी पारोवे, भैन ने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई। सोरे घर जातीए कर ली फर्जां दी कमाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई। जा सोरे कर दिए ले जा लट्टां भरी विदाई।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई पटोले।